सुभूत परमेश्वर अमृत नाम संगत मिल की नो संग शरण परि प्रभ अंतर नानक ओट परि प्रभ स्वामी दृष्ट शुभ काम क्रोध अरूप सदा सुख मन सुख संसार नव निध दरिया दरियाल गुर से जस

मुंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी उती उचारी तना सरी ये पांचो गाई माल राखो सक संग लाई मारू बस।

नब के उड़ैया ताहे वंश के बटैया देत बा गुलाब डाल वृग ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञानी तिनो जानि पा बखानी ना है असन प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूच रीक जैया कहे नब के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बचैया ताहे बांध रीक जैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सोचा गोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देर चारी लिख के नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटिर को कन्हैया नाम कंस को बथैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीट तना गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोग जटा धारी सती सचे बटे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत है न्योलिकरम जल होम पावक पवन होम अधो मुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मूर दादर बांदर करत घोर दामनी अनेक भव करियो ही करत है चंद्रमा ते सीतर न सुरत तपत दे इंद्र सुन राजा भव भूम को भरत है याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत

दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो। एक ही किसे सब ही को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज उई, मान सब एक बयाने को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक, हिंदू न्यार न्यार देशन के।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकद फिरत के ते रूपवासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुअ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे जो आचार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मंडली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

हंसने हंसना थे ओ दंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्मा थे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अक्षयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वरणं न व्याधं न रोगं न सुखं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध बिरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे

न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साकेन वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाकेन सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के धर्म लूले, कहूं देश के भेष के धर्म धाम में, कहूं राज के सा

कहूँ नेह गृह कहूँ देह दुख कहूँ औखदी रोग के सुख सुख कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादगी ताम सी।

देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं

कहूं करत सासर से मृद उचार गई बजत एक पग निराधार। कई नेह दे गई गेह वास गई ब्रह्म देश देश अनुदास गई जल निवास गई अखन ताप गई जपत उर्त लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदप तास पायतनांत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार।

जय जम बहु जो गुण जू जुअंग भय कम बहु मेर भयाल भुवंग तपतापद सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद अभ्यंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल अपाल दयाल सुअंग जेठ ट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जहर चंग सर्व मकीन मका जहराग न रूप न रेख रुखंग जय दाप न साप न सोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जय रचंग छत्री छत्र सितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दुख गणंग जय अंड ब्रह्मंड रचेव दस चार करी नवखंड सचेव रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पदाव प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरो बिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज से तज उत भुजंग ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज से तज देर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास तंग रज रोज एकादश चंद्र।

रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मणमाणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा।

लो तब ताप करे नहीं नेक कृपा निध पान पर। जय फोकट धर्म सफेद जय एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचार सार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंधा फस है।

भूत भूत है सत है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्रमय न तंत्रमय न मंत्र बस आवई बुरान हो कुरान नेत नेत कह बतावई। न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइए गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए। न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छायो को मिलाओ है, न राग है न रंग है न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है, अजन्म है अभेग है, न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है अभेद है।

जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार। कोटिंद्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुख चार। आद अंत न मध जा को भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब

नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार सोत सोत थके महासुर पाय उन्हें पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को

निकंदन पुष्ट उदंडन रूप तेजंडा सुरजंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अधम धारण ऊर्ध अधे जय जय हो से मासुर मर्दन रंभक बर्दन आदवृते डावरू डबंके बपर बबंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमक भूखंड धमके अत झमके फुंग फनंग जय जय हो सी मासुर मर्दन रंभक बर्दन दैद जिनंग चंडासुर चंडन मुंड मुंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा फरंगन फणी फुंकारण जोत जिते सरदार विपरखंड दुष्ट प्रखरखंड पुष्ट प्रहरखंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मासुर मर्दन भूमा का सलूर्ध दे दामनी प्रहासन सुचम निवासन सृष्ट प्रकाश।

सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारन छि छुर हारन धूम धुंकारन द्रभ मथे दाढ़ विव्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे कर्म प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य।

केसरी प्रवाह है, सुध सन्ना है, अगम था है, एक वृते जय जय हो सी मखा सुर मर्दनाद कुमार अकाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष विनाशन।

संकटी निवारण तम उदाहरण तेज प्रकार खण धुंध तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जब जिवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ।

गंड का विराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुलत सुरंग को किल सुन लाजे किल विक भाजे सुखूब राजे मधुरंग दुर्जन दल दच्छे मंथन रिछे सब न फज्जे रूह रणंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर विते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन सुधमते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़मते जय जय होशी मैं खासुन मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते वृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरि जय जय होशी मैं खासुन मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्दन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वि प्रकरखंड सर्वर वरखंड दुष्ट प्रदरखंड बितल तले अष्टायत बाहन बोल बाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेव करच्छन संत प्रतच्छन शुद्ध सरे

दयाल दाता तुरंत दुख दोख रहत जेहे नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए। अंछिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रोग सोग ते रहत।

रे पाछ बसो नग नाग नराधिव सर्व समय सब को व्रत पार। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पारण पाए सके बदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराजक रूख रुहान की रोज नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहं वेवना भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ ना आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किंस।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापतल है। रोकंते और सोकंते जल जो कंते बहुत बचावे। शत्रु अनेक चलाव दिखाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करत कर पाप समूहन भेट न पावे। और की बात कहा कहे तू सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ ना आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ ना आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पान सब बजहारे। भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग।

रंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आंखें चली दिल के रूप के रूप के लम्बे के देश के मंगे रूपी रूप के जीवन के रूप के बुद्धि को मल पंख के बुद्धि के पाप को जो को मत है गुफा को न कावे चिन्ह मचीन के गुफा को न कावे चिन्ह मचीन के देश के दल तेरे

त्रास निवरिया है। हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री सदुज्यों करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन।

निंदक दुष्ट खिनवाहे बिदारियन ते साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरा।

माफ करना। पड़ी सुनी बाणी सच खंड विच प्रवान करनी, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करनी, कारज रास करने यात्रा सफली करनी, सिख पढ़

गुड़गुड़सवा मलेश की करकुड़ा पसार डंका बाजे फेका नेक रंग अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्रभुते स्वयं भव स्वयं दास सुते दुकाल अंकना से दयाल स्वरूपे सदांग संगे अभंग विभूते देख सिंह।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास भयकार जोगी सुन त्यावन जिते लिख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कर सतिया मन संतोख उपजा देने के विचार दिंदे मंगे सहसा गुणा सुख करे संसार चोरा जा रहा तै कुड़िया रहा भाविका एक होंदा खाए चले।

अंडज जेर जित पुजा कहानी सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कैसे।